0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: मोकिल रेफरेंसेस फौरी तौर एहतसाब अदालत ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम एहतसाब अदालतुनि खे रिकॉर्ड मिलंदे ई करप्शन रेफरेंसेस ते कानून मूजिब कार्रवाई करण जी हिदायत इक़बाल ज़ैद अहमद अली रज़ा इफ्तिखार क़ाइम ख़ानी ऐं अहमद हयात समेत ॿियनि ख़िलाफ़ अरबे रुपियनि जा रेफरेंसेस बहाल LPG कोटा नेशनल बैंक KPTA ऐं कराची में सरकारी ज़मीननि जे गैर क़ानूनी मुंतक़िली वारा केसिस बि हाणे एहतसाब अदालतुनि में हलंदा अॻूणे IG सिंधु गुलाम हैदर जमाली ख़िलाफ़ नैब जी दरख़्वास्त रद्द रेफरेंस लाॻापियल इदारे ॾांहुं मोकिलण जी हिदायत सिंधा कोर्ट फैसले में चयो आहे त जेकॾहिं गैर क़ानूनी भर्तियुनि सबबि मुलाज़मनि खे बरतरफ़ कयो वियो आहे त सरकारी नुक़सान जी रक़म ज़िमेवार आफ़िसर जे पघार या पेंशन मां वसूल कई वञे सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान ऐं नतीजनि ख़िलाफ़ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जो रिकॉर्ड अदालत में पेश अदालत पारां दरख़्वास्त गुज़ारनि जे कॉपीज़ जी ॿीहर चेकिंग जे लाइ 5 रुकनी कमेटी जोड़ण जी तजवीज़ अदालती तजवीज़ ते एडवोकेट जनरल सिंध जो एतिराज़ दरख़्वास्तुनि ते मेरिट तहत फ़ैसिलो करण जी सदा एडवोकेट जनरल चयो त पहिरीं दरख़्वास्तुनि जो ॿुधण जो हुअण बाबति फ़ैसिलो कयो वञे अदालत चयो त सच जो साथ ॾियो नौकरियूं अचणियूं वञणियूं आहिनि मामले खे हमेशह लाइ हल करण जे लाइ गाइडलाइंस जारी कयूं वेंदियूं जस्टिस निसार भमरो चयो त पैसा वठी कुझु माण्हुनि खे पास कयो वञे थो जांच जे लाइ मामिलो नैब ॾांहुं मोकिले छॾियूं था जस्टिस सलीम जेसर चयो त अदालत में बीठल सभु रोई रहिया आहिनि त नाइंसाफ़ी थी आहे हिकु साहिबु आयो हो जंहिंखे लिखण बि न अची रहियो हो मामिलो कमेटी ॾांहुं मोकिलियूं था पास थींदड़ खां इम्तिहान वठंदी पास थींदड़ सिंधी या उर्दू में बि मज़मून लिखी ॾेई सघनि था हैदराबादी सेशन कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकुम ते सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खां गॾियल चटाभेटी इम्तिहान 2024 में फेल थींदड़ उमीदवारनि जो रिकॉर्ड पंहिंजी तहवील में वठी छॾियो ज़रियनि मूजिबि सेशन कोर्ट जो अमलो राति देरि सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी हेड ऑफिस पहुची फेल उमीदवारनि जे पेपर्स जूं कॉपीज़ तहवील में वरितियूं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सुप्रीम कोर्ट में वञण जो हवालो ॾींदे रिकॉर्ड ॾियण खां लवाइण जी कोशिश बि कई अदालत खे इहो चई रिकॉर्ड तहवील में वरितो त सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जे हुकमनि ख़िलाफ़ मनानामो जारी नाहे कयो जंहिं बाद उमीदवारनि जो रिकॉर्ड ॾिनो वियो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में 3 ॼणा क़तल हैदराबाद में पुराणी दुश्मनी तां हथियारबंदनि जो घर ते हमिलो 1 ॼणो क़तल नसीम नगर थाणे जे हंधि अली पैलेस वारी घिटीअ में हथियारबंदनि ज़हूर अली सोलंगी खे क़तल कयो जेकोबाद वासी नौजवान कराचीअ में क़तल चनापाड़े वासी नौजवान परवेज़ अहमद कटो खे शाह लतीफ़ टाउन में क़तल कयो वियो हिंगोजा वेझो फुर दौरान मज़ामत ते मुमताज़ मारवाड़ी क़तल हिंगोजा पुलिस पारां फोरन जो पीछो करे ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जी दावा उमरकोट में जो स्कूल जी भिति किरी पई 3 ॿारियूं दॿिजी फौत ॻोठ कमोरी में भिति किरण सबबि सोगरा थी अबू बकर किनज़ा थी अब्दुल समद ऐं रायबा थी फारूक कोरी दॿिजी वियूं ॻोठाणनि ॿारनि खे भिति हेठां कढी सिविल अस्पताल उमरकोट पहुचायो जिते डॉक्टर्स फोतकी जी तसदीक कई ॿारनि जा लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले ज़रई पाणीअ जी खोट ऐं चोरीअ ख़िलाफ़ नवाब शाह टनोबागो ऐं फैज़गंज में आबादगारनि जो एहतजाज नवाब शाह में दौर तालके जे वनहड़ो ऐं सकरन शाख जे आबादगारनि जो पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज पुछड़ीअ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो टनोबागो में नव माणिक वाह जे आबादगारनि बदर चौक ते धरणो हुयो फैज़गंज में अलीगंज शाख जे आबादगारनि एहतजाज जी मुज़ाहिरो कयो सदन चवण आहे त वाह ऐं शाखनि जी पुछड़ीअ में पाणी नाहे पहुतो फसल सुकी रहिया आहिनि पुछड़ीअ जे आबादगारनि जो मुआशी क़तल बंदि कयो वञे अवामी तहरीक पारां ॿारनि जे अॻवा ऐं पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज टंड मोहम्मद ख़ान जुदू ऐं तंगवाणी में मुज़ाहिरा टंड मोहम्मद ख़ान में अलफताह चौक खां रैली कढी प्रेस क्लब अॻियां एहतजाज कयो वियो जुदू में एहतजाजी रैली कढी बैंक चौक ते धरणो हयो वियो तंगवाणी में कारकुननि एहतजाजी रैली कढी अॻवाननि जो चवणु आहे त पाणीअ जी खोट सबबि गुरबत ऐं बेरोज़गारी में वाधि थी रही आहे गुम थियल ॿारनि खे बाज़ियाब कराए सिंध खे पंहिंजे हिसे जो पाणी ॾिनो वञे ऐं डिपलो में पीअण जे पाणी जो बहरान संगीन थी वियो मुख़्तलिफ़ तंज़ीमुनि जो एहतजाज अवामी तहरीक जमात इस्लामी ऐं JUI जे कारकुननि बदीन रोड ते धरणो हुयो अॻवाननि जो चवणु आहे त डिपलो वासियुनि खे ॿियूं सहूलियतूं त नथा ॾेई सघो घटि में घटि पीअण जो पाणी त ॾियो 3 महीननि खां मिठो पाणी नाहे मिलियो
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: GAFM 9

0: 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ऐं शानदार कैरियर मौक़ो पेश कयो वञे थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाइ काबिल तजुर्बेकार ऐं ज़िम्मेवार उम्मीदवारनि खां दरख़्वास्तूं तलब कयूं वञनि थियूं। GAFM एक अहिड़े प्रोफेशनल फर्द जी ॻोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप ऐं ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मज़बूत सलाहियतूं रखे ऐं इदारे खे बहितर अंदाज़ में अॻिते वधाए सघे। ख़्वाहिशमंद उम्मीदवार पंहिंजी CV फौरन व्हाट्सएप ज़रिए मोकिलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे। देर न करियो, अॼु ई अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाब शाह जो आवाज़।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए। वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम ए शानदार करियर मौको पेश कर वने तो GFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस काबिल तजुर्बेकार ए जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तल

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल हम राही 27 मार्च से जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: जी FM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: इट्स 4:50।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की।

30 से 40 साल की उम्र में अपनी स्किन का खास ख्याल रखें। इस उम्र में खवातीन अपनी शख्सियत से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती हैं और जान जाती हैं कि इन पर क्या चीज अच्छी लगती है और क्या बुरी नजर आती है। उन्हें बखूबी मालूम होता है कौन से असरात मुरतब वजह से स्किन धब्बे पड़ने लगते हैं। उम्र में अपनी गजा के जो कुछ माल ज्यादा चिकनी और मीट मचाले वाली अशिया से परहेज करें। इस उम्र में स्किन की कुदरती नमी कम होने लगती है, इससे ड्राइनेस होती है। लिहाजिंग क्रीम का इस्तेमाल करें, खास तौर पर मेकअप से पहले क्रीम जरूर लगाएं। नींद की कमी की वजह से आंखें सूज जाती हैं, हल्के पड़ जाते हैं और बाजार में ऐसी क्रीमें बासानी दस्तियाब है जो आंखों की सूजन को खत्म कर देती हैं। इसको लगाने के 10 मिनट बाद कंसीलर लगाएं ताकि हल्के छुप जाएं। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, भरपूर नींद लें और खीरे के कतले काट कर चंद मिनट आंखों पर रखने से थकन दूर हो जाती है। आलू के कतले रखने से आंखों के हल्के कम हो जाते हैं। 25 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को चाहिए वो हल्के शेड के फाउंडेशन और पाउडर इस्तेमाल करें जो आपकी जिल की रंगत और बनावट के लिए मौजूद रहे। जनाब, ये थी कुछ इन्फो जो आपकी स्किन के हवाले से हमने आपसे शेयर की। अब हम सेगमेंट रारा सा गीत सुनवाते हैं। इस ट्रैक के बाद होगा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

अब वो कौन सा बैग है जिसे इस्तेमाल करने के लिए गीला किया जाता है? हमारे लिसनर जो है ना, वो अभी तक इसके राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फातिमा ने हमें दुरुस्त आंसर

0: उसके लिए यूज होता है टी बैग. ये है दुरुस्त जवाब. तो जनाब अब हम जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे की जानी. वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं.
1: हर दिन जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
2: की गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 मिनट ते सिर्फ GFM 88.